0: गले तो क्या पांव तक सोना पहनाएंगे लाला अपनी राधा को भगवान की बात से। चिंता न करो रानी, दयालु का जो हाथ पकड़ेगा वो सदा सुखी रहेगा। सुखी लाला अगर कुत्ता भी पालेंगे तो उसके गले में सोने की जंजीर डालेंगे। सोने की, राम कसम, लक्ष्मी लगती हो लक्ष्मी। आओ
1: राधा के रूप में आते हुए लाज ना आए, मेरे रूप में आई हो तो अपनी लाज लुटते हुए भी देख ले। हंसू नहीं, हंसू नहीं, संसार का भार उठा लोगे।

0: जो कुछ कर रहा है ठीक कर रहा है।
1: पंडना की बेटी नहीं, मैं गांव की बेटी, अब मेरी इज्जत है, तेरी इज्जत है, सारे गांव की इज्जत है। वक्त लगन करो, मैं जिम्मेवार हूं, मेरा बच्चों ऐसा ही करेगा, मेरा बच्चों ऐसा ही करेगा।

देवी, राधा रानी के चरण लाला का घर, धन्य भाग, धन्य भाग। चलिए आओ, अंदर आओ, आओ अंदर आओ।

0: लाला अगर कुत्ता भी पालेंगे तो उसके गले में सोने की जंजीर डालेंगे, सोने की। राम कसम, लक्ष्मी लगती हो लक्ष्मी। आओ
1: लक्ष्मी, राधा के रूप में आते हुए लाज ना आई, मेरे रूप में आई हो तो अपनी लाज लुटते हुए भी देख ले। हंसू नहीं, संसार का भार उठा लोगे।

कोशिश कर रहा हूँ ठीक कर पंडाला की ही बेटी नहीं मैं गांव की बेटी अब मेरी इज्जत है तेरी इज्जत है सारे गांव की इज्जत है पकड़ लगन करो मैं जिम्मेवार हूँ मेरा बच्चू ऐसा ही कर रहा है मेरा बच्चू ऐसा ही कर